अरे बच्चे तो खुदे के हुए फिर उड़ा रहा है कुछ किचे में खेल में दारे जो मेरे शवा दिमाग के हुए दमित देवा भी अब दिल